0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैनहट्टन
2: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी।
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

रकाबत तो इसी से, तस्खीर है मकसूद तिजारत तो इसी से, खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से, कमज़ोर का घर होता है गारत तो इसी से, अक्वाम में मखलूक के खुदा बढ़ती है इससे, कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है इससे।

कहा आज प्रभु आएंगे, आज सेवा का अवसर मिलेगा, जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। भगवान राम पहुंचे, केवट से कहा केवट हमें इस नदी के उस पार उतार दो। केवट ने कहा नहीं प्रभु, एक शर्त है। प्रभु ने पूछा शर्त क्या है? केवट ने कहा प्रभु पहले अनुमति दें

राम सोचने लगे कि केवट का तो यही काम है, इसी से इसका परिवार चलता है, तो इसे कुछ मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन देते क्या, कुछ था ही नहीं। बनवासी राम सब छोड़कर आए थे। इशारा किया सीता जी को और सीता जी ने एक अंगूठी केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। केवट बोला, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता,

आज तो सेवा का अवसर मिला है। भगवान राम बोले, केवट ले लो, ये मजदूरी है और मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते। केवट बोला, प्रभु ये शर्म की बात नहीं है, ये तो एक नियम है, आपसे नहीं ले सकता। भगवान राम ने पूछा, ये नियम क्या है? केवट बोला, प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: मोहसिन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। जे तुसा पुराना सोना बेचना है बहुत चंगे रेट पर देने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
2: चाचा ज्वेलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
3: ਓਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ।
2: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
3: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ, ਓਕਲੈਂਡ, ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਨਾਲੇ, ਜਿਨਾਇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੰਡੀ ਮਾਰੀ, ਨਕਨਤੀ ਲਾਇ ਸਿਰਫ 2 ਪੌਂਡ ਨਾ,

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: 24 hours a day.
3: It's a classic hit. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: दुआओं के फूल आपके नाम करते हैं, आपके चाहतों को, आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हैं। बन जाए आपकी ज़िंदगी खुदा की नेमतों और बरकतों से जन्नत, यही दुआ हम सुबह, दोपहर और शाम करते हैं 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे। ये आपका अपना सनराइज रेडियो है, शहनाज मंसूर आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल कीजिए मेरा मोहब्बत भरा चाहत भरा खुलूस की अता गहराइयों से। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, जिंदगी बखैर, जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज़ ने आप तमाम को खैरियत से पाया होगा। आपका पिछला हफ्ता और आपका आज का ये खूबसूरत चमकता दमकता दिन जो है वो अच्छा गुजर रहा होगा। हमेशा हमारी दुआओं में आप रहते हैं और हमेशा हमारे दिलों में आपके लिए दुआएं रहती हैं कि अल्लाह पाक आपको और आपके साथ जुड़े तमाम खूबसूरत रिश्तों को अपने अमान में हमेशा हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप उन तमाम रिश्तों को, आपके जो भी करीबी हैं, आपके हमसाए हैं, आपके बच्चे हैं, आपके वालदैन हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके बच्चे हैं, उन सभी के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन तमाम रिश्तों को उन तमाम नेमतों से नवाजे जिनमें आप सब के लिए खैर व बरकत हो, सुकून हो, अमन हो, राहत हो, सेहत व तंदरुस्ती हो, खुशहाली हो, मोहब्बत हो और ज़िंदगी और आखिरत की भलाई हो। आमीन। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को खुशियों से भर दे, आपकी हर मुश्किल को आसान करे। अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आपके रिस्क, आपके जान व माल, आपकी औलाद में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए और आपको तमाम दुश्मनों, हासिदों और बुरी नज़र से महफूज रखे अल्लाह पाक। आमीन सुमा आमीन। उम्मीद करती हूँ सामीन के आप जो है हमेशा की तरह आज भी खैरियत से हैं, खुशबाश हैं और आज के इस खूबसूरत और मुबारक दिन में जो है वो अपनों के लिए और दूसरों के लिए हमेशा दुआ गो हैं, जैसे कि हम हैं, कि अल्लाह पाक जो है वो हम सबको हमेशा अपनी अमान में रखे और सबको सेहत व तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अगर खुदा ना करे है आप में से कोई आज बीमार है, परेशान है, किसी मुश्किल में है, तो हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आपकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे और आपको दिली, ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी सुकून अता फरमाए। आपकी दुआओं से हम बिल्कुल खैरियत से हैं, हमारे मिजाज भी ठीक ठाक हैं, आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं और आपकी दुआएं ही एक बार फिर हमें यहाँ पर लेकर आई हैं। आज जुमा का दिन है, मुबारक दिन है, हमारी मुलाकात होती है जुमा के दिन 11 और 2 के दौरान पुराने सदाबहार गीतों के साथ। यादों का सफ़र होता है और आप हमारे हम सफ़र होते हैं, हमेशा हमेशा आपके साथ ये सफ़र हम तय करते हैं। आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आए हैं कि आपका साथ मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा और आपके संग संग ये सफ़र हम तय करेंगे। आपकी डेडिकेशंस भी होंगी, आपके पैगामात भी होंगे और आपकी मनपसंद आवाज़ें आपके नाम करेंगे, आप खूबसूरत गीतों के को आपके नामों के साथ जोड़ेंगे। डेडिकेशंस के लिए हमारा नंबर रहेगा 01274306666।
1: मिजाजे गरामी
2: दुआ है आपकी।
0: आगे बढ़ने से पहले करते हैं कि आपको टाइम बता देते हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में क्या टाइम है।
3: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 11:13। बढ़ेंगे, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फौरन बाद आप सुनेंगे हिट ऑफ द आवर।

उन्हें कुछ खबर नहीं है, यह जिंदगी बिता दी। जफर इकबाल की आवाज में हिट ऑफ द आवर आप सुन रहे थे 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा 100.6 एफएम पे आप हमें सुन रहे हैं अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर में और डीएबी के जरिए आप सुनते हैं ब्रैडफोर्ड, केटली, इल्कले, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में भी हम बहुत जल्द आने वाले हैं। इसके अलावा आप भी हैं हमारे जो वेबसाइट पे, आप जो है www.sunriseradio.fm पे भी आप हमें सुन सकते हैं इंटरनेट पे, और सनराइज रेडियो का ऐप भी है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और 24 घंटे सनराइज की नशरियात को सुन सकते हैं। मैं हूं शहनाज मंसूर, आपके साथ हूं दोपहर 2 बजे तक पुराने सदाबहार गीतों के साथ, पुरानी यादों के साथ, और यादों का सफ़र है हमेशा की तरह, और आप हमारे हम सफ़र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ का, आपकी दुआओं का और हमारे हम सफ़र बनने का। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपने मोहतरम भाई चौधरी फ्राइजिंग हॉल से, अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से, सॉरी माफ चाहती हूँ, फ्राइजिंग हॉल से अब्दुल कयूम भाई, आपने आज जो है हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले कॉल की, बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपने भाई से बात करके। आप हमेशा हम सनराइज की टीम को हमेशा अपनी दुआ में याद रखते हैं और हमारा हमेशा हौसला भी बढ़ाते हैं, हर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ आप आते हैं और बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हैं और यादों भरा प्रोग्राम होता है ये, आपको बहुत पसंद है, आपकी यादें हम ताज़ा करते हैं और हर गीत के साथ आपकी यादें जुड़ी हैं, आप आकर हमें बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि आप हर गीत को इंजॉय करते हैं और खो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का, आपने अपने तमाम दोस्तों को, अपनी तमाम टीम को, सनराइज की टीम को अस्सलाम वालेकुम कहा है, ढेरों दुआएं भेजी हैं, जुमा की मुबारकबाद पेश की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिना शौकत आपका मैसेज भी मिला व्हाट्सएप पे, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आप हमारी साथी हैं, हम सफ़र हैं, हमारी दोस्त हैं, हमारे खैर ख्वाह हैं, आपकी दुआओं का, आपके प्यार का बेहद शुक्रिया। आपने तमाम दोस्तों को, सनराइज की टीम को और तमाम सामीन को भी ढेरों दुआएं भेजी हैं, अस्सलाम वालेकुम कहा है और जुमा की तेरी मुबारकबाद पेश की है, बहुत बहुत शुक्रिया हिना शौकत आपका भी। मिस्टर मिसेस हुसैन आपके मैसेज का भी शुक्रिया, आपकी जानिब से भी सभी को ढेरों दुआएं हैं और जुमा की मुबारकबाद है, बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों का जो कि हमेशा हमारे साथी होते हैं, हमारे हम सफ़र होते हैं, हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाते हैं, आपका साथ हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत है।

मैं बैरागन नाचूंगा, बहुत ही खूबसूरत शौक चंचल सा गीत था, लेकिन अगर गौर से सुना जाए तो इसमें पैगाम भी था, एक बहुत खूबसूरत पैगाम था। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में खूबसूरत सा गीत हमने आपके गोशे गुजार किया, और अब बारी आती है छोटी सी ब्रेक की। ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: बिखरा कर दिया सबके सामने।
1: रानी की बच्ची इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी तुम।
2: अरे बुद्धू, बापू ने कहा है

मोहब्बत राज होती है। मोहब्बत राज होती है, इसे अफशान नहीं करना। मोहब्बत लाजमी करना मगर चर्चा नहीं करना। मोहब्बत जिस पे नाजिल हो वो दिल तो खास होता है, अगर मिल जाए ये नेमत इसे जाया नहीं करना। मोहब्बत कर रहे हो तुम ये पेशे नजर रखना। मोहब्बत कर रहे हो तुम ये पेशे नजर रखना, मोहब्बत छिन भी जाए तुम उसे रुसवा नहीं करना।

मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ। आशा भोसले की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत आप सुन रहे थे 103.2 FM पे। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है, आपकी दुआओं के साथ, आपकी मोहब्बतों के साथ और आपकी चाहतों के साथ ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। आपकी दुआओं का बेहद शुक्रिया, आपके साथ का बेहद शुक्रिया। आप हमें मैसेजेस कर रहे हैं, आप हमें फ़ोन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और ये जान के आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सुबेहा जी आपका, समीना जी आपका, आप भी हमारे प्रोग्राम को सुन रही हैं और आपने ढेरों दुआएं भेजी हैं अपनी तमाम टीम के लिए, सनराइज़ की टीम के लिए और हमारे तमाम सामीन के लिए। ढेरों ढेरों ढेरों जुमा की मुबारकबाद भी पेश की है, आप सबका बेहद बेहद बेहद शुक्रिया। और नईम बगदादी भाई लाहौर पाकिस्तान से, हमेशा की तरह आपकी दुआएं, आपका प्यार हमें मिला, जुमा की मुबारकबाद आपने हमें दी, आपका बेहद शुक्रिया। आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी जुमा की ढेरों मुबारकबाद। दुआएं हमेशा आपके साथ रहते हैं और आपकी दुआएं हमेशा हम पाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा अपने दिलों में हमें रखने का और अपनी दुआओं में हमें याद करने का। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत सा गीत, चंचल सा गीत, चंचल की आवाज़ में आपके गोशे गुजार करते हैं।

0: मम्मी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। लता जी की खूबसूरत आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। आपको टाइम बताना है अब हमें।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 11:48। जी हाँ जी, 11:48। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया अदा करती हूँ अपने प्यारे से भाई वाजिद भाई, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह। आपने तमाम सामेन को, सनराइज़ की टीम को और अपने तमाम दोस्तों को दुआएं भेजी हैं, जुमा की मुबारकबाद पेश की है, अस्सलाम वालेकुम कहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और प्यारी सी बहन अदीबा जी, आपकी कॉल मिस होगी, आजरा जी आपकी कॉल भी मिस होगी, अगर आप दोबारा करें तो इंशाल्लाह बहुत वक्त है, आपसे ज़रूर बात होगी और हमें भी अच्छा लगेगा। और इसके अलावा हमारी बात हुई हमारे बहुत ही प्यारे भाई, छोटे से भाई तारिक भट्ट ड्यूसबरी से, बहुत अरसा के बाद आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमेशा की तरह। और ये जानकर आप खुश हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, आप पाकिस्तान गए हुए थे शायद, इसीलिए बहुत अरसा से आपसे मुलाकात नहीं हुई, आपसे बात नहीं हुई। और हम तो ये जानते थे कि शायद आप जो है वो आपने हमारा प्रोग्राम सुनना बंद कर दिया है, या कोई वजह होगी आप हमसे नाराज़ हैं जो आपने हमें इतना अरसा हुआ फ़ोन नहीं किया, क्योंकि हमेशा हमारे प्रोग्राम में आप हाजिरी लगाते थे, अपनी दुआओं से और अपने खलूस से हमें नवाजते थे। लेकिन काफ़ी

लंबा गायब हो गया। जी हाँ जी, बहुत, मैं तो ये नहीं कह, महीने हो गए हैं शायद, हफ्ते नहीं महीने हो गए हैं आपसे बात नहीं हुई। आज अचानक से आपकी कॉल आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ हैं। बस हमारी दुआएं हैं आपके साथ, आप यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहे, अपनी ज़िंदगी के मज़े लेते रहें, अपनी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। आपकी दुआओं का बेहद शुक्रिया, इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बातें होती रहेंगी। तो चंद अशआर हैं जो आप तमाम के नाम करते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन कहीं आसमान नहीं मिलता, तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस ना हो, तमाम शहर में ऐसा नहीं कि खुलूस ना हो, जहाँ उम्मीद हो उसको वहाँ नहीं मिलता, कहाँ चिराग जलाएं कहाँ गुलाब रखें, कहाँ चिराग जलाएं कहाँ गुलाब रखें, छतें तो मिलती हैं लेकिन मकान नहीं मिलता। ये क्या अजाब है, ये क्या अजाब है, सब अपने आप में गुम हैं, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता, चिराग जलते ही बेनाई बुझने लगती है, खुद अपने ही घर में घर का निशान नहीं मिलता।

वही जताने आग लगाएं, उन्हीं से आग बुझाएं, हमें क्या हो गया है। दादाजी की खूबसूरत आवाज़ में ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में। 100.6 FM पे आप सुनते हैं कालदेटेल और वेस्ट यॉर्कशायर के इलाकों में। डीएबी के जरिए आप सुनते हैं ब्रेडफोर्ड, केटले, इल्कले, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन और एकरिंगटन में। मैं हूं शहनाज मंसूर, आपके साथ साथ हूं दोपहर 2 बजे तक। पहला घंटा जो है वो ख़त्म होने को आ रहा है, आपके साथ का, आपके प्यार का, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ साथ ये वक्त बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा है। इस घंटे में साथ निभाने का, अपनी दुआओं से नवाजने का बेहद शुक्रिया और हमारे साथ साथ चलने का शुक्रिया। मिलते हैं, नहीं अभी तो काफ़ी चंद मिनट बाकी हैं, ये गीत सुनवाते हैं आपको और फिर लौटते हैं और मिलते हैं आपसे। ये प्यारा सा गीत आप तमाम के लिए है।

0: जिमें गुडिया नाल पटोले तेरे नाल मैं जचदी जुबिन शंकर की आवाज में हिट ऑफ द आवर आप सुन रहे थे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आन पहुंचे हैं आप सभी का खैर मकदम है जी आयन खुश आमदीद वेलकम गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने बहुत खूबसूरती से और बहुत प्यार और दुआओं के साथ हमारा साथ निभाया और आप हमारे साथ साथ हैं इस घंटे में भी, आपका बेहद बेहद शुक्रिया। आपके साथ ही अगले दो घंटे भी हमें बिताने हैं, आप हमारे साथ हैं तो फिर किस चीज़ का डर है। आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है और ये चाहतों मोहब्बतों खलूस और दुआओं का सफ़र होता है और आप हमेशा हमेशा हमारे हम सफ़र रहते हैं और अपनी दुआओं से नवाजते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाते हैं अपने खूबसूरत नामों के साथ, अपनी दुआओं के साथ, अपने प्यार के साथ। बहुत अच्छा लगता है आप सभी से बातें करके, आप सभी को अपने साथ पाकर। आज भी आपका साथ आपका प्यार मिल रहा है, शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का दूसरा घंटा है तो इस घंटे में आपकी डेडिकेशंस होंगी और खूबसूरत यादों भरे गीत आपके नामों के साथ हम जोड़ेंगे। आपको पहला घंटा बहुत पसंद आया, आपने गीतों को एंजॉय किया। हमारी प्यारी सी बहना जी हाँ जी दीबा जी आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। हमेशा की तरह बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ आती हैं और अपनी मीठी मीठी बातों से हमारा दिल मोह लेती हैं और हमेशा हमारे दिलों पर अपने प्यार के निशान छोड़ जाते हैं। हमारा दिल हमेशा खुशी से भर जाता है जब भी आप आती हैं और इतने प्यार और दुआओं से नवाजते हैं तो हमारा जी जाता है। जैसे कि आपने कहा कि जब भी डालने को जी जाता है हमारा भी यही जी जाता है। तो चलिए वो कहते हैं ना एयर हुक कर लेते हैं हम। आपको तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपकी मीठी मीठी बातें सुनकर और आपकी मीठी मीठी हंसी सुनकर। आप बहुत खुश हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत आजमाइशों से गुजारता है लेकिन आप फिर भी बहुत हिम्मत वाली हैं, बहुत सब्र वाली हैं। अल्लाह पाक आपको और भी हिम्मत दे और भी सब्र दे और जितनी भी आजमाइशें हैं आप पर अल्लाह पाक आपको उन पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए और आप यूं ही हंसती मुस्कुराती रहें और हमें भी अपनी दुआओं से नवाजती रहें और आपका साया हमेशा आपके ग्रैंड चिल्ड्रन पर, आपके बच्चों पर हमेशा कायम दायम रहे। यही हमारी दुआएं हैं और आप हमेशा मसरूफ़ होते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने नवासों नवासियों के साथ, अपनी प्यारी सी पोती के साथ। और आज भी आप मसरूफ हैं और आपको बाहर भी जाना है लेकिन आपने अपनी बहन को याद किया और अपने प्यार से नवाजा, बहुत अच्छा लगा। हमेशा की तरह आपने ढेरों दुआएं भेजी हैं तमाम सनराइज की टीम को, तमाम सामेन को और ख़ास तौर पर अपनी प्यारी प्यारी प्यारी प्यारी बहनों को जिनमें सादिया जी हैं, शाजिया जी हैं, हाजरा जी हैं और परवीन जी हैं और आपके भांजे हैं नदीम मंसूर, उनको भी आपने अस्सलाम वालेकुम कहा है, दुआएं भेजी हैं, जुमा की मुबारकबाद पेश की है। रुखसार भाई को भी और सनराइज की तमाम टीम को भी अस्सलाम वालेकुम कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपकी दुआओं का। आपके लिए गीत भी ज़रूर आएंगे, जो भी गीत हैं वो सभी आप ही के लिए हैं। आपके आपकी जो कहते हैं हाजिरी का बहुत बहुत शुक्रिया और तारिक भट्ट आपका भी बेहद शुक्रिया, आपकी दुआओं का, आपके खलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये प्यारा सा गीत आप तमाम के नाम है तो इससे पहले टाइम बता देते हैं आपको।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 10 मिनट्स पास 12, 10 मिनट हो चुके हैं, 12 बजकर मेरे अभी 10 ही बजे हुए, 12 बजकर 10 मिनट हो गए हैं। तो बढ़ते हैं इस खूबसूरत से गीत की जानिब जो कि आप तमाम के नाम है जो कि हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, जिनसे हमारी मुलाकातें हुई, बातें हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्यारा सा गीत आप तमाम के लिए है, जो सामीन जिनसे बात नहीं हुई उनके लिए भी है, आप भी सुन सकते हैं, एंजॉय कीजिए। मुस्कुरा के हमको लूटा आपने, जीत कर बहना आपने भी 2-3 बार फोन किया, आपकी कॉल मिस होगी, माजा चाहती हूँ, फिर से कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह जरूर बात होगी मिसिस को। और आपसे भी माजर चाहती हूँ, आप भी अगर आपके पास वक्त है जरूर कॉल कीजिएगा।

कैसे कोई दिल को समझाए, किशोर कुमार की मधुरी आवाज, दिल को मोह लेने वाली आवाज में ये प्यारा सा गीत, सदाबहार गीत, आपका मनपसंद गीत, हमारा मनपसंद गीत, जिसे आपने सुना 103.2 FM पे, www.sunriseradio.fm पे आप सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, 100.6 FM पे कालदरडेल और वेस्ट यॉर्कशायर के इलाके में आप सुनते हैं, डीएबी के जरिए आप सुनते हैं केटली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर और इर्द-गिर्द के इलाकों में, ब्लैकबर्न में, ईस्ट लंकाशायर में, बर्नली, ब्लैक और डार्विन में भी आप सुनते हैं, नेल्सन और एक्रिंगटन के इलाकों में भी, मिल्टन कीन्स में बहुत जल्द हम आने वाले हैं, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। मैं हूं शहनाज मंसूर, आपके साथ हूं दोपहर 2 बजे तक। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो है वो जी हाँ तकरीबन आधा घंटा होने को आ रहा है। आप तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं, जिनसे हमारी बातें हुई, मुलाकातें हुई, बहुत अच्छा लगा मिसिस कौर आपसे बात करके, हमेशा की तरह बहुत ही मीठी हैं आप भी, और बहुत मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें करती हैं, दिल खुश कर देती हैं आप, इतने इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इज्जत वही देता है जो खुद इज्जत वाले होते हैं, और आप बहुत मान वाली हैं, बहुत प्यारी हैं, इसीलिए सभी को आप भी इज्जत और प्यार से बात करती हैं और उन्हें दुआएं देती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। जीत कौर बहना, आपकी कॉल फिर मिस हो गई, क्या हो रहा है ये आज, क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपसे बात ज़रूर हो जाए। और हमारे भाई रऊफ हाशमी भाई, पहली बार आपने प्रोग्राम में शिरकत की, अच्छा लगा, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, यादें ताज़ा हो रही हैं आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए भी गीत ज़रूर लगाएंगे, जो गीत आपको भी अच्छा लगे वो आप ही के लिए होगा। ये आने वाला गीत मैं नज़र करना चाहूँगी अपने प्यारे से भाई अब्दुल कयूम भाई, फराइजिंग हॉल से आपने हमें याद किया था हमेशा की तरह, और आपने अपने तमाम दोस्तों के नाम गीत करना चाहा था, तमाम साथियों के नाम जो भी इस वक्त सुन रहे हैं उनको आपने दुआएं भेजी हैं, जुमा की मुबारकबाद पेश की है, और ये गीत सुनना चाहा था, ये गीत नहीं बल्कि आपने कोई भी गीत कहा था, क्योंकि आपको जो भी गीत हम लगाते हैं अच्छे लगते हैं, ये गीत आपके नाम और आपके तमाम दोस्तों के नाम, और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी प्यारी सी बहना, जी हाँ जी हाजरा जी आपके नाम करना चाहूँगी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी, हमेशा की तरह आप भी मेरी तरह मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, और ये जो चंद दिनों की गर्मी है इसे खूब एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये चंद दिनों की मेहमान है, फिर हम इसे ढूंढते रह जाएंगे। एंजॉय कीजिए, कंप्लेन ना कीजिए, शिकायतें ना कीजिए, ये भी अल्लाह का करम है कि चंद दिनों के लिए हमें जो है वो अल्लाह पाक ने अता की है ये गर्मी। बहुत बहुत शुक्रिया हाजरा जी, अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपकी फैमिली, आपके घर बार सब ठीक ठाक हैं, आपने सभी को जुमा की मुबारकबाद पेश की है, हमें भी और सनराइज की टीम को दुआएं दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और फिर ढूंढते हैं अगला गीत।

0: तो है तुमसे हर खुशी अपनी। लता जी की खूबसूरत आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे 103.2 FM पे। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी प्यारी सी बहना जी, हाँ जी, जीत कौर जी, आपसे बात हो ही गई। पता नहीं क्या हो रहा था, ये क्यों हो रहा था तीन चार बार आपकी कॉल मिस हो गई, लेकिन शुक्र है कि आखिर बात हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कोशिश का, आपके प्यार का, आपकी दुआओं का। बहुत अच्छा लगता है हमेशा की तरह आपसे बातें करना, आपसे मिलना, आपसे मुलाकातें करना, अच्छा लगता है। आज भी अच्छा लगा आपसे बातें करके। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, आपकी हंसी सुनी कानों को बहुत मीठी लगी आपकी हंसी, अच्छा लगा कि आप जो है वो आगे बढ़ रही हैं ज़िंदगी में। अल्लाह पाक आपको और भी सब्र दे, और भी हिम्मत दे, और आपको तौफीक दे कि ज़िंदगी की जो भी मुश्किल हैं आप उनसे लड़ सकें सब्र और हिम्मत के साथ। हमारी दुआएँ आपके साथ साथ हैं। और अब हमें चलना है, ब्रेक लेनी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

मैंने तेरी ने जुदाई कर छड़िया जुदाई नाली यमला बना के परा सटिया दस मैं के प्यार विच खटिया लाल चंद यमला जट की प्यारी सी आवाज में ये यादों से भरपूर गीत आपके गोशे गुजार किया जिसे आपने सुना 103.2 FM पे। बहुत सी यादें ताज़ा हो गई इस गीत की गीत को सुनने के बाद, इस आवाज़ को सुनने के बाद। मुझे याद है कि बचपन में गर्मियों में जब हम छत पे सोया करते थे पंखा लगाकर फर्श धोकर ठंडे पानी से, और पंजाबी का प्रोग्राम आया करता था इंडिया से, तो उसमें ये गीत चला करता था और हमारी अम्मी और हमारे हमसाए जो है वो दीवारें जुड़ी हुई थी, मिलजुल के गीत सुना करते थे। और लाल चंद यमला जट जी की जब भी कोई गीत चलता था बहुत इंजॉय करते थे, बहुत पसंद करते थे इनको। तो आज वो सब यादें ताज़ा हो गई, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद और यकीन है कि आपकी यादें भी ताज़ा हुई होंगी। मुझे तो बचपन की गर्मी याद आ गई, आज की गर्मी को तो मैं बिल्कुल ही भूल गई। ये गर्मी भी क्या गर्मी है, गर्मी तो पाकिस्तान इंडिया की या एशियन मुल्कों की होती है जहाँ के 50-50 डिग्रीज तक हो चली जाती है गर्मी, और उसे भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन ये सब इम्तिहान है खुदा की तरफ से, अल्लाह पाक हम सबको जो है तौफीक दे कि हम इस इम्तिहान में से गुजर सकें, कामयाब हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। हमें दो कॉलें मौसूल हुई, एक अनोनिमस कॉल थी जिनका नंबर तो नहीं आया, लेकिन एक कॉल आई थी जिनके 3 डिजिट्स हैं, आखिरी 3 डिजिट्स हैं 844। आप दोनों की कॉल मिस होगी, माजर चाहती हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात करेंगे। अभी हमारे प्रोग्राम में काफ़ी टाइम बाकी है, 2 बजे तक हम यहीं पर हैं आपकी डेडिकेशंस के साथ और आपके पैगामात के साथ। तो ऐसा है कि जी हाँ जी, अब हमें अगला गीत लगाना है, लता जी की आवाज़ में है। इस गीत को मैं नाम करना चाहूँगी हाजरा जी आपके नाम करना चाहूँगी, और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी तारिक भट्ट भाई आपके नाम करना चाहूँगी, ड्यूसबरी में हैं आप, और आपके तमाम दोस्तों के नाम करना चाहूँगी जो भी इस वक्त सनराइज की नशरियात को सुन रहे हैं। मैं देखती हूँ कि मेरे पास आपकी लिस्ट है या कि नहीं, आपके दोस्तों की मैं चेक कर रही हूँ, अगर मिल गई तो उनके नाम भी लगा दूंगी आपकी जानिब से। मुझे याद है कि आप ख़ासतौर पर आमिर शहजाद और परवेज़ ख़ान के नाम आपकी सुनना चाहते थे, और जितने भी आपके दोस्त हैं जिनमें कियानी मुदस्सर हैं और महबूब इलाही हैं, चौधरी फरियाद है, सफ़ीउल्ला भाई है, शकील भाई बरले में हैं, नवीद राना हैं, जावेद मीर भाई हैं, वाजिद भाई हुडर्सफील्ड में हैं और चौधरी मुजफ्फर हैं। इन तमाम दोस्तों के नाम आपकी जानिब से और सनराइज़ की तमाम टीम के नाम, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हमारे सामीन को भी ये गीत अच्छा लगेगा। यही गीत हमारे मोहतरम भाई राउफ हाशमी भाई आपके नाम भी करना चाहेंगे, इस उम्मीद और यकीन के साथ आपको भी अच्छा लगेगा। और मुझे उम्मीद है यही गीत वाजिद भाई हुडर्सफील्ड में आप भी पसंद करेंगे, इस गीत को पंजाबी का गीत भी आपको ज़रूर सुनवाएंगे, सुनते रहिएगा। और ये गीत वाजिद आपकी जानिब से आपकी तमाम टीम के नाम हैं जिनमें शामिल है महबूब इलाही है, चौधरी मुजफ्फर है, अब्दुल कयूम फ्राइजिंग हॉल में है, अयूब चौहान मैनचेस्टर में है, चौधरी फरियाद हैं, सफ़ीउल्ला भाई है, शकील भाई है बरले में, नवीद राना है, चौधरी वलायत खान है, चौधरी फरियाद पाकिस्तान में है, और इसके अलावा तारिक भट्ट के नाम, कियानी मुदस्सर के नाम, परवेज़ ख़ान के नाम और आमिर शहजाद के नाम। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप सब मेरे साथ साथ इस गीत को एंजॉय करेंगे। ख़ासतौर पर हाजरा जी आपके लिए है।

बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, दिल की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत, उदास गीत था लेकिन बहुत ही प्यारा गीत, यादों से भरपूर पुराना गीत। अब आते हैं एक और खूबसूरत से गीत की जानेब, सुरेंद्र कौर की आवाज़ में है और ये गीत मैं सुनवाना चाहूँगी अपनी प्यारी सी बहन मिसेस कौर, आपके नाम करना चाहूँगी। बहुत हफ्ते पहले आपने गीत सुनना चाहा था माँ बेटी के का कोई गीत सुरेंद्र कौर की आवाज़ में, तो ये गीत आज मेरी नज़रों के सामने गुजरा तो मैंने कहा आपके नाम कर दूँ, और यही गीत जीत कौर बहना आपके नाम भी करूँगी और यही गीत दीवा जी आपके नाम भी करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम बहनों का जो कि इतना प्यार, इतना मान, इतनी इज्जत देती हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है आप सबसे बातें करके, आपको अपने साथ पाकर। आपका प्यार जब मिलता है ना तो मैं वो कहती हूँ कि फूले नहीं समाती, मैं बहुत फूल जाती हूँ, इतना भी ना दे कि मैं मोटी हो जाऊँ और फिर स्टूडियो की इस चेयर पे मैं पूरी ना आ सकूँ, मुझे कोई एक्स्ट्रा लार्ज चेयर जो है वो लानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम के प्यार का। और प्यारी सी बहना ब्रेडफुट 2 से पहली बार इतनी मीठी आवाज़ की मालिक सायरा जी, पहली बार उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आपको सलाम देना चाहती थी और आपको जुमा की मुबारकबाद देना चाहती थी। हाउ स्वीट एंड हाउ नाइस, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। वालेकुम सलाम और जुमा की बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो, आपके प्यार का, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हमारी छोटी सी मीठी सी प्यारी सी बहना ने आज पहली बार प्रोग्राम में शिरकत किया और हमें अपनी दुआओं से नवाजा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और आबाद रहिएगा। जल्दी से सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और फिर बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे।

0: मावा तियां मिलन लगियां, चारों कंधा ने चुपारे दे हलियां। बस ये जिंदगी का दारो मदार है, रवाज है, और ये सिलसिला है जो कि अरसे से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। बेटियां जो है वो हमेशा जुदा हो जाती है माँ से, और जो तकलीफ माँ बाप को होती है वो तो सिर्फ उस वक्त वो जो उस जिस हालत से गुजरते हैं वो सिर्फ माँ बाप ही जानते हैं। लेकिन हमेशा बेटियों के लिए दुआएं रहती है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और शाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का जो कि हमारे साथ साथ हैं। आपको टाइम बता देते हैं,
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 12:46। लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Sunrise Radio, Sunrise.
3: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: रहे
1: और हम चुप ही रहे। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा भी करीबन ख़त्म होने वाला है। आप तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं। हमसे मुलाकातें हुई, आपकी आपसे बातें हुई, अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ निभा रहे हैं। बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो कि हमेशा अपना कीमती वक्त हमें नवाजते हैं, उसके लिए मैं आपकी मशकूर और ममनून हूँ। आने वाला गीत मैं नाम करना चाहूँगी दीबा जी आपके नाम करना चाहूँगी, उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको अच्छा लगेगा। और आपकी प्यारी प्यारी बहनों के नाम करना चाहूँगी जिनमें शामिल हैं सादिया जी हैं, शाजिया जी हैं, हाजरा जी हैं, परवीन जी हैं और आपके भांजे हैं नदीम मंसूर। और आपने रुखसार भाई के लिए भी गीत सुनना चाहा और उन्हें भी दुआएं भेजी हैं आप तमाम के लिए। हमारी प्यारी सी बहना दीबा जी की जानिब से ये प्यारा सा गीत और हमारी जानिब से आप तमाम सामीन के लिए है। नईम बगदादी भाई लाहौर से आपके नाम भी यही गीत करेंगे और यही गीत मुझे उम्मीद है वाजिद भाई हुडसफील में आपको भी अच्छा लगेगा आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम। और तारिक भट जो कि ड्यूसबरी में है आपके नाम भी ये गीत। निक्के हुंदियां दा प्यार वेखी देवी ना वसार, मैं तो जिंद वी जे मंगे देवा तेरे उतो वार। प्यारी सी बहना सायरा जी ब्रैडफोर्ड टू से आपके लिए भी है ये गीत। अब्दुल कयूम भाई फ्राजिंग हॉल से आपके लिए है।

ढोला वेण करें दे टुटे दिलां वाले तार निके हुंदियां दा प्यार मसूद राणा और नाहिद नियाज़ी की खूबसूरत आवाज़ों में ये बहुत ही खूबसूरत गीत सदाबहार गीत आपके गोशे गुजार किया। पुराने सदाबहार गीतों का प्रोग्राम है, यादों का सफ़र है, आप हमारे हम सफ़र हैं। हमेशा इस प्रोग्राम में आपकी यादों को हम ताज़ा करते हैं और आपकी यादों को याद करने और आपको याद करवाने आते हैं, और ऐसा ही हो रहा है। आपकी यादें ताज़ा हो रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है और हमें और भी अच्छा लग रहा है कि आप खुश हो रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया हमारे गीतों को पसंद करने का और गीतों को एंजॉय करने का। मलका इतरानम नूर झा की आवाज़ में एक और खूबसूरत सा गीत आप तमाम के नाम है। इस गीत को मैं नाम करना चाहूँगी रऊफ हाशमी आपके नाम करना चाहूँगी, और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी दीपा जी आपके नाम, और समीना जी आपके नाम, मिस्टर मिसेस हुसैन आपके नाम, और हिना शौकत आपके नाम। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको अच्छा लगेगा। यही गीत हमें ले चलेगा जी हाँ जी 1 बजे की इंटरनेशनल न्यूज़ की जानिब, और न्यूज़ के फौरन बाद फिर आपसे मिलेंगे यहीं पे

0: कोई होर हो भी तो छोड़ बसिया ये ऐसा ही हाँ जो वादे निभाते बसिया। नसीब लाल की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही अच्छा गीत और बहुत ही प्यारा गीत और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने की कि हम ही हैं जो कि निभाते हैं और कोई होता तो कब को छोड़ जाता। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। जब वो होता है ना कि जब एक बार ठान लो कि यहाँ ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर जो भी हो बर्दाश्त करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है और गिव एंड टेक होता है। जी हाँ जी, ये ज़िंदगी के मामलात ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत था और नसीबो लाल की आवाज़ में आपने सुना, आपको अच्छा लगा, अच्छी बात है, आप ही के लिए था, है ना जी। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सामीन ने भी इसे इंजॉय किया होगा। आपको टाइम बता देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है 10 मिनट्स पास्ट 1, 10 मिनट हो चुके हैं 1 बजकर। तो सिलसिला जो है वो जारी है आपकी डेडिकेशंस का और आपके पैगामात का। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत हैं, हमारे साथी हैं, हमारे हम सफ़र हैं और इस सफ़र को हमारे साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं, गीतों को इंजॉय कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, बहुत अरसा हुआ मैंने इसे अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं किया और मेरा मनपसंद गीत है और यकीन आपका भी। ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी इसमीना जी आपकी जानिब से, आपकी तमाम टीम के नाम करना चाहूँगी, नायला के नाम, नसरीन के नाम, फरजाना के नाम, शकीला के नाम और जूबी के नाम, आबी के नाम और इसके अलावा आपके साथ हैं आशी भी हैं और शीला भी हैं, इनके नाम करना चाहूँगी। और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी मिस्टर मिसी हुसैन आपके नाम, हिना शौकत आपके नाम और आपकी जानिब से एजाज और उस्मान भाई के नाम, मिस्टर मिसी हुसैन आपके नाम और दीपा जी मुझे उम्मीद है ये गीत आप और आपकी प्यारी प्यारी बहनों को, जी हाँ जी, सादिया जी को, शाजिया जी को, हाजर जी को अच्छा लगेगा और प्रवीण बहनों को भी पसंद आएगा ये गीत और आपके भांजे जी हाँ जी नदीम मंसूर साहब, उनको भी ये गीत अच्छा लगेगा आप तमाम साथियों के लिए। और यही गीत, जी हाँ जी, यही गीत हम नाम करना चाहेंगे हाजर जी आपके नाम, भी जीत कौर बहना आपके नाम, मिसिस कौर आपके नाम, सायरा जी ब्रैडफोर्ड से आपके नाम और माफ़ी चाहूँगी मोहम्मद अकरम भाई, आपने जिस गीत की फरमाइश की वो हमें अभी तक तो नहीं मिल पाया, कोशिश करूँगी अगर दोहराने प्रोग्राम मिल गया तो आपको सुनवा दूँगी, नहीं तो जो भी गीत आपको अच्छा लगे वो आप ही के लिए होगा। तो आइए सुनते हैं मनहर उदास की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, वाजिद भाई ये गीत आपके नाम और आपकी टीम के नाम, तारिक भट्ट भाई आपके नाम और आपके तमाम दोस्तों के नाम। मोहम्मद अकरम भाई आपके नाम, रऊफ हाशमी भाई आपके नाम।

हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। बहुत ही खूबसूरत गीत, प्यार भरा गीत, मेरा मनपसंद गीत, आपका मनपसंद गीत, आपको अच्छा लगा, आप ही के लिए था।

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: छापा कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
2: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

बिंदिया चमकेगी और चूड़ी खदकेगी, बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही प्यारी सी आवाज़ वन एंड ओनली लता मंगेशकर की आवाज़ में। ये सदाबहार गीत आपने सुना 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुन रहे हैं हमें पूरी दुनिया में, और इसके अलावा 100.6 एफएम पे आप सुनते हैं कार्लटनडेल और अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर में डीएपी के जरिए ब्रैडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन और एक्रिंगटन में आप सुन रहे हैं हमें, और मैं हुसैनाज मंसूर आपके साथ साथ हूँ। जी हाँ जी, ये आधा घंटा और 11 बजे से अब तक हमारा साथ निभाने का, हमारे हम सफ़र बनने का, हमारे सफ़र को खूबसूरत बनाने का और हमारी यादों की गाड़ी में सफ़र करने का बेहद बेहद शुक्रिया। हमने आपको कहाँ तक सैर कराई, कहाँ से कहाँ पहुँचाया, ये तो आप ही जानते हैं। आपको मज़ा आया, ये भी आप ही जानते हैं। आपका बेहद शुक्रिया, आप साथ निभा रहे हैं, हमारे साथ साथ हैं। आप तमाम काम जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। आपने जो हमें अपने कीमती लम्हे दिए, हमसे बातें की, हमसे मुलाकातें की, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये प्यारा सा गीत आप तमाम के लिए है।

0: सुन रसिया मन बसिया काहे को जलाए जिया आजा। बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने सुन रहे थे 103.2 FM पे। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपने प्यारे से छोटे भाई जी हाँ जी तारिक बट ड्यूसबरी से दोबारा आपसे बात हुई। अच्छा लगा आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं, गीतों को एंजॉय कर रहे हैं और आपको जितने भी गीत हमने लगाए अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप ही के लिए थे और आधे घंटे में जो बाकी रह गए उसमें भी जो गीत होंगे वो आप ही के लिए होंगे और आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम होंगे। यादाबरी का बेहद शुक्रिया, दुआओं का बेहद शुक्रिया। आप हमेशा हमारी दुआओं में रहते हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें और अपनों के साथ साथ रहें। यही हमारी दुआएं हैं आप तमाम के लिए। तो बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: 24 hours a day. Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield, and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group, quality homes from a landlord you can trust. Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923.
3: Official media partner, Sunrise Radio.

हूँ ए जादूगर, ये कौन सा खेल रचाया, मेरा अंग अंग मुस्काया। बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में। अब आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत सा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनवाते हैं। ये गीत जीत कौर भैना आपके नाम करेंगे और ये गीत आशी आपकी जानिब से नाम करेंगे नसरीन के, फरजाना के, शकीला के, समीना के और सभिया के और जितनी भी आपकी सहेलियाँ इस वक्त सुन रही हैं उनके नाम करना चाहेंगे। मिस्टर मिसी हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने का, गीतों को इंजॉय करने का, अपनी यादों को याद करके आपको बहुत खुशी हो रही है और आपको अच्छा लग रहा है कि हमें आपने कहा कि आप जो भी गीत लगाती हैं उनके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई होती हैं, हमारा बचपन जुड़ा हुआ होता है, तो अच्छा लगता है सुनकर। और मिसेस कौर ने भी यही कहा था कि फरमाइश करने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि आप हर किसी की पसंद का ख्याल रखती हैं और हर किसी की पसंद के मुताबिक गीत लगाती हैं और हमारे कहने से पहले ही गीत जो है वो आप लगा देती हैं। और हमारे जो भी गीत होते हैं आपको मिसेस कौर अच्छे लगते हैं और मिस्टर मिसी हुसैन आपको भी पसंद आते हैं, और यही बात और भी भाइयों ने कही थी कि जो भी गीत हम लगाते हैं आपको पसंद आते हैं और हमारी पसंद आपको अच्छी लगती है। तो आप तमाम का बेहद बेहद शुक्रिया। थोड़ा उदास गीत है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। यही गीत नईम बगदादी भाई लाहौर में आप सुन रहे हैं, आपके नाम करना चाहेंगे, आपकी फैमिली के नाम करना चाहेंगे। और यही गीत जो है मैं नाम करना चाहूँगी अपने अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से आपके नाम भी, और वाजिद हडर्सफील्ड में है आपके नाम भी, और राउफ हाशमी भाई आपके नाम भी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको अच्छा लगेगा।

यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जिसे आप सुन रहे थे। और अब चंद ही सेकंड्स में हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के जाने पड़ेंगे। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी हमारी आपसे। जी हाँ जी,

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: शिहा जेवी, आप सुन रहे थे अजान 103.2 एफएम पे, और अब आपको टाइम बताते हैं और फिर एक और छोटी सी ब्रेक हमें लेनी है।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 1:44। लेते हैं छोटी सी नन्ही सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
2: सनराइज रेडियो, सनराइज
3: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
4: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
3: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
4: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

की मुलाकात बस इतनी। जी हाँ जी, हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में भी सिर्फ 12 मिनट बाकी हैं। आज का सफ़र बस यही तक था। आप तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे हम सफ़र रहे, हमारी यादों की गाड़ी में हमारे साथ सवार थे। अब आपको बता दें कि यादों की गाड़ी अब अपने स्टेशन पे पहुंच आई है, आप भी वापस लौट आइए। जहां जहां में की भी आपने सैर की और अच्छी की और आपको अच्छा लगा, अच्छी बात है। अब अगर आप वापस लौटना चाहें तो आप लौट सकते हैं, और अगर वहीं पे यादों में खोए रहना चाहते हैं, डूबे रहना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी। वैसे गाड़ी अब स्टॉप हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ निभाने का, हमारे साथ साथ चलने का, हमारे गीतों को एंजॉय करने का, हमें अपनी दुआओं और प्यार से आपने नवाजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसा है कि ये जो प्रोग्राम है, ये मैं आज आपको क्या बताऊँगी, तीन हफ्ते की छुट्टी पे जा रही हूँ। कुछ ज़रूरी काम है, घर फैमिली की मसरूफियात हैं, हॉलीडेज़ हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चों से मुलाकातें करनी हैं, मिलना जुलना है फैमिली के साथ, तो इस वजह से अगले तीन हफ्ते आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है अपना ख्याल रखिएगा, यादों में याद रखिएगा, यादों में भी और दुआओं में भी। हमेशा आपकी दुआएं पाते हैं और लेते हैं, और आपकी दुआओं के साथ ही हम यहाँ से रुखसत होते हैं, आते हैं तो दुआएं मिलती हैं और जाते हैं तो आपकी दुआएं और आपका प्यार अपने साथ लेकर जाते हैं। आज भी आपकी दुआएं, आपका प्यार अपने साथ लेकर जा रहे हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमें अपनी दुआओं से नवाजा, हमारे हम सफ़र रहे, हमें हमेशा याद करते हैं और हमारे प्रोग्राम को सराहा, हमें दुआएं दी और प्यार दिया। आपका बेहद शुक्रिया, हमेशा आपके लिए दुआएं हैं और रहेंगी। तो ज़िंदगी ने वफा की और सेहत ने इजाज़त दी, तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी चंद हफ्तों के बाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, शाद रहिएगा, जहाँ भी रहिएगा अपनों के साथ रहिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि किसी का दिल मत दुखाएं। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो किसी को दुख भी ना दें, बस जिए और जीने दें, यही हमारा मोटिव है। और यही हम इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे अगली मुलाकात तक। आप सबका और हमारा अल्लाह निगेबान, फी अमानुल्लाह, खुदा हाफिज़ एंड गुड आफ्टरनून।

जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में। इसके साथ साथ अगर आप हमें दुनिया के किसी और हिस्से में सुन रहे हैं तो उसके मुताबिक हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इंडिया में सुन रहे हैं तो आपको हम कहेंगे आपका स्वागत करते हैं हम, स्वागत। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सुन रहे हैं तो आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन इंग्लिस्तान में तो आप सुन ही रहे हैं। मतलब आप इंग्लिस्तान में अगर हैं और हमारा रेडियो स्टेशन सनराइज रेडियो नहीं सुन रहे तो फिर और क्या सुन रहे हैं? घर वालों की बातें सुन रहे हैं या अपनी वाइफ की बातें सुन रहे हैं या वाइफ अपने हस्बैंड की बातें सुन रही हैं? बहरहाल आप सारी बातों को एक साइड पर रख दीजिए और सुनिए सनराइज रेडियो 103.2 एफएम, इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके साथ साथ अगर आप हमें इंग्लैंड में सुन रहे हैं तो ऑफकोर्स हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आपके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, आपका दिन रात कैसा, दिन रात एक किया हुआ है या दिन और रात अलग अलग से हैं? कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि उनका दिन और रात का पता ही नहीं चलता। वो या तो रात को काम कर रहे होते हैं तो दिन को घर वापस जा रहे होते हैं, और अगर दिन में काम कर रहे होते हैं तो रात को घर वापस जा रहे होते हैं। बहरहाल आप किस कैटेगरी से हैं, कि आपका ताल्लुक किस कैटेगरी से है ये हमें ज़रूर बताएगा। स्टूडियो का नंबर हमेशा की तरह आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा। आप हमें अपने टेलीविज़न पर भी सुन सकते हैं, आप हमें रेडियो प्लेयर पर सुन सकते हैं, ऑनलाइन ऑफकोर्स सुन सकते हैं sunriseradio.fm पर, और इसके साथ साथ आप अपने Amazon Kindle Fire पे भी सुन सकते हैं सनराइज रेडियो की नशरियात। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका हमारे साथ रहेगा आपसे लेकर तकरीबन तीन घंटे, नेक्स्ट आइंदा जो तीन घंटे हैं हमारा आपका साथ रहेगा। और तकरीबन मैंने इसलिए कहा है कि यू नो इंसान है, आगे पीछे हो सकते हैं हम, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में साथ साथ जो हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले हमें मैनचेस्टर में सुन रहे हैं तो आप हमें DAB के ज़रिए सुन रहे हैं, और लीड्स में भी DAB के ज़रिए सुन रहे हैं। इसके साथ साथ ओल्डम, रॉसडेल, ईस्ट लंकशायर और मिल्टन किंग्स, वाओ, मिल्टन किंग्स में आप हमें सुन पा रहे हैं DAB डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम सिर्फ 24 घंटे नहीं, साल के 365 दिन नहीं, बल्कि हमारा और आपका साथ उम्र भर का है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

ओके सो बात यह है कि गाने तो हम सुनते रहते हैं, इसके साथ साथ हम मूवीज़ भी देखते रहते हैं, मूवीज़ के साथ साथ हम ड्रामे भी देखते रहते हैं। मतलब क्या क्या इंसान देखे, सारा दिन मोबाइल भी देखते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो तो हम करते हैं बातें सुनने के लिए हम रेडियो ऑन करते हैं। बाज़ोकात हम बहुत बोर हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार रेडियो पे क्या चल रहा है, या तो खबरें या तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आपको हर घंटे के बाद जो हमारा खबरनामा मिलता है उसमें आपको खबरें मिलती हैं, ट्रैफिक की अपडेट मिलती हैं, जिससे आप बाखबर रहते हैं कि दुनिया में और आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में, आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है। इससे सनराइज़ आपको अपडेट रखता है। इसके साथ साथ आपको गाने तो हम सुनाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमारे शो में आज नहीं होने वाली है, वो ये है कि फरमाइशी गाने मैं को नहीं चलाने। अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा, लेकिन आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। आप कभी भी हमसे बात करें, और बात करने के लिए नंबर तो आपको पता ही है, और हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306666, यानी कि चार दफ़ा छः, मतलब 01274306666। आप हमें स्टूडियो में अभी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि व्हाट आर यू अप टू।

मुझे याद है कि एक जमाना हुआ करता था कि जब बड़ा मायूब समझा जाता था कि कोई हमें फॉलो कर रहा है, कोई आपका ताकुब कर रहा है। आजकल हर दूसरा बंदा दूसरे बंदे को यही कहता है कि आप मुझे फॉलो करें। आजकल हम खुद किसी को दावत दे रहे होते हैं कि भाई हमें फॉलो करें, मतलब मैं जहां जहां पे जाऊं, मैं जो कुछ भी करूं, मैं जो कुछ भी खाऊं, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मतलब आजकल की जिंदगी इस तरह की हो चुकी है। बहरहाल आप भी हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, और इसके साथ साथ हमेशा की तरह आप हमें सुन पा रहे हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू भी, sunriseradio.fm।

जी आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है, आप हमें कॉल करें 01274 30666 पर। अच्छा, ये हमारा एक कह लीजिए कि ये देसियों का एक मामला है कि हम लोग ईमेल्स और टेक्स्ट वगैरह पर बहुत कम यकीन रखते हैं। हम अगर ईमेल कर भी दें किसी को गलती से या फिर उनको हम मैसेज कर दें, टेक्स्ट मैसेज, एक तो ये धड़का सा लगा रहता है कि टेक्स्ट मैसेज अगर आपने किया है तो वो सीन हो गया है या नहीं सीन हुआ। अगर सीन हो गया है तो वो बंदा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ ईमेल्स पे तो खैर ये तरीका नहीं है कि आप चेक कर सकें कि किसी ने आपकी ईमेल पढ़ ली है या नहीं पढ़ ली। बहरहाल होता यह है कि हम लोग ईमेल्स पे और टेक्स्ट पर ये इन चीज़ों पे बहुत कम बिलीव करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी को ईमेल किया तो वो ईमेल कहीं पर गुआस गई है, मतलब कहीं पे खो गई है, उसका कोई नामो निशान नहीं है कि अगले बंदे को पहुंच गई है या उसको रिस्पॉन्ड करने में कितना वक्त लगेगा। लिहाजा हम बिलीव करते हैं फ़ोन कॉल्स पर। हम कहते हैं कि यार फ़ोन करो यार, क्या है यार, मतलब इसमें से पहले चेक करो, मतलब डायरेक्ट बात जब तक बंदे से ना हो हमें तसल्ली नहीं होती। तो बहरहाल आप अपनी तसल्ली रखिए और हमें कॉल कीजिए 01274 30666 पर। आपकी फरमाइशें बहरहाल हम नहीं ले रहे, लेकिन अगर आपकी कोई ये फरमाइश है कि आपने मेरे थ्रू किसी को आई लव यू कहना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उनका नाम बता सकते हैं। मैं आपका जो पैगाम है, मोहब्बतों भरा पैगाम, वो पूरी ईमानदारी से थर्ड पार्टी तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू।

इसका बेहद बेहद बेहद बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। लाइंस बहुत बिजी हैं, अगर आपकी कॉल नहीं मिल पा रही तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बहुत माजरा चाहता, आपसे माजरा चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज जो आपकी कॉल्स आ रही हैं वो इतनी भरपूर आ रही हैं कि उसमें मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यकीन कीजिए, ये जो एक शो करना है ना, ये जो एक रेडियो का शो करना है, ये ऐसा है कि जैसे आप जहाज़ चला रहे हैं। मतलब आपको हर चीज़ के ऊपर, आप इतने सारे बटन्स आपके सामने होते हैं, आपको हर बटन के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि अच्छा कोई बटन आगे पीछे ना हो जाए, किसी टाइमिंग गलत ना हो जाए। तो बहरहाल आपकी कॉल्स का शुक्रिया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी कॉल्स सबकी जो हैं वो मैं रिसीव करूंगा और आपसे बात भी होगी। अगर आपको दोबारा डायल करना पड़ रहा है तो उसके लिए माजरत, और अगर आप दोबारा डायल करते करते नहीं थक रहे तो आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।

0: कफन अफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

सियाने कहते हैं कि आपकी जो नेटवर्थ होती है, किसी भी इंसान की जो नेटवर्थ होती है, वो अक्सर देखा जाता है ना कि किसी की क्या वर्थ है, वर्थ से मुराद जो नेटवर्थ है कि उसके पास पैसे कितने हैं, वो कितना अमीर है, उसका बैंक बैलेंस क्या है। सियाने कहते हैं कि किसी भी इंसान का जो बैंक बैलेंस होता है, जो नेटवर्थ जिसकी होती है, वो उसका नेटवर्क होता है। जिस तरह आपका नेटवर्क सनराइज रेडियो है, या आपका फैमिली नेटवर्क है, और जो हमारा नेटवर्क है वो आप हैं। हमारा तो बैंक बैलेंस यही है, हमारा जो ख़जाना है वो आपकी मोहब्बतें हैं, और जो आपका ख़जाना है वो सनराइज रेडियो है, जो आप डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू सुनते हैं, और जिसमें हमारी जो मोबाइल ऐप है वो शामिल है, और इस ऐप के थ्रू आप हमें डायरेक्ट सुन सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई कह लीजिए कि थर्ड मैन या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ये आपका और हमारा डायरेक्ट राबते का एक सोर्स है, जिसके थ्रू आप से हम कलाम होते हैं और हम आपसे हम कलाम होते हैं। हम कलाम होने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से के थ्रू हमें रब्ता हमसे रब्ता कर सकते हैं, और sunriseradio.fm हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको हमारे सोशल्स के तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

बहुत से दिल जले हमें सुन रहे हैं और उन दिल जलों की ये फरमाइश है, ये तमन्ना है, ये चाहत है कि एक कोई दुखी किस्म की शायरी प्रोग्राम में शामिल की जाए। लेकिन एक बात मैं हमेशा से इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जब इंसान कोई दुखी होता है ना, उसको दुखी शायरी, दुखी गाने, दुखी बातें और दुख पहुँचाने वाले जो लोग हैं उनसे मज़ीद थोड़ा सा किनारा कशी कर लेनी चाहिए। दुखी शायरी या दुखी गाने आप इसी सूरत में सुनना चाहते हैं कि आप दुखी हैं या किसी की याद आपको सता रही है, तो मैं आपसे माजरा चाहता हूँ। अगर आप ऑलरेडी दुखी हैं तो मैं आपको कोई दुखी शायरी सुना के, दुखी गाने सुनाकर मज़ीद दुखी नहीं करना चाहता। तो बेहतर यह है कि अगर आप ने दुख फोलने ही हैं, अपने खरोलने ही हैं, या उन दुखों को आपने दोबारा से ज़िंदा करना है या उनको ताज़ा करना है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको उसका एक बेहतरीन किस्म का उपाय बताऊंगा कि आपको जो दुख लाहक हैं उनसे आप छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर तो आपको पता ही है, 01274306666। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

अच्छा जी, कहते हैं कि मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती, मोहब्बत की सिर्फ एक जुबान होती है, और वो जुबान होती है कि किसी भी जुबान में अगर आप मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसको प्यार से बोला जाए तो वही मोहब्बत की जुबान होती है। मोहब्बत की जुबान वही होती है जो आपकी मादरी जुबान होती है। अगर आप अपनी मादरी जुबान से प्यार नहीं करते तो आप प्यार कैसे कर सकते हैं? तो आपकी मादरी जुबान चाहे पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, उसके अलावा पहाड़ी है, पोटोहारी है, या पश्तो है, या किसी भी किस्म की आपकी ज़ुबान है, अगर आप वो ज़ुबान बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप शायद मोहब्बत करने में भी किसी हद तक कंफर्टेबल ना हो। मोहब्बत तो हमेशा अपनी ही ज़ुबान में उसका मज़ा आता है, और चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो लड़ाई हो, जब इंसान लड़ाई भी करता है, गुस्से की हालत में भी होता है, तो वो अपनी मादरी ज़ुबान में ही लड़ाई करता है, तो उसको अजीब सी तस्कीन मिलती है कि शायद ये सही तरीका है लड़ाई करने का। मतलब हम लोग जो अपने अपने वतनों से यहाँ पर आकर आबाद हैं, अपनी अपनी ज़ुबानें बोलते हैं, जब हम लड़ाई करने की कह लीजिए स्टेज पर आते हैं, किसी से लड़ाई करना चाहते हैं या आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती जब तक हम अपनी ज़ुबान में उससे आर्ग्यूमेंट ना कर लें, या उनसे हम लड़ाई ना कर लें, उनसे गिला ना कर लें। ये जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो बोलते हैं, वो अपनी ज़ुबान में लड़ाई करते हैं तो उनको

अच्छा लगता है। बहरहाल ज़ुबानें सारी अच्छी हैं और जो भी ज़ुबान मोहब्बत और प्यार से बोली जाए वो सारी अच्छी ज़ुबानें हैं, सारी हमारी ज़ुबानें हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने किस ज़ुबान से हमसे बात करनी है, आप कोई भी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उसमें मोहब्बत ज़रूर शामिल कीजिएगा। स्टूडियो का नंबर है 01274306666। आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज़ रेडियो।

अच्छा जी, वक्त की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात ये होती है कि वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो गुजर ही जाता है। हालांकि वक्त की रफ्तार एक ही होती है, जब आप खुश होते हैं तो बहुत जल्दी गुजर जाता है, लेकिन अगर आप खुश नहीं होते हैं, अगर आप परेशान हैं, बेजार हैं, या आपको किसी चीज़ में नुकसान पहुंच चुका है, तो वही वक्त आपके लिए जो एक सेकंड है वो एक घंटा बन जाता है, एक घंटा एक दिन बन जाता है। तो इसी तरह जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हर लम्हा, हर पल, हर सेकंड आपके ऊपर एक पहाड़ जैसा बोझ लेकर आता है। आपको लगता है कि ये वक्त गुजर क्यों नहीं रहा। अभी हमारे शो को भी देखें, आपके साथ साथ चलते चलते हमारा वक्त कितना अच्छा और खुशगवार गुजर रहा है कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। वक्त भी गुजर जाएगा, आप भी जहां पर जा रहे हैं, जहां जाना चाहते हैं, आप भी गुजरते गुजरते वहां पहुंच जाएंगे, और हम भी आपसे बात करते करते इस शो को अलविदा कहकर फिर अगले शो की इजाज़त लेकर आपसे हम अलविदा हो जाएंगे, आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तो वक्त है, अभी आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आपने रहना है हमारे साथ साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हैं आपके साथ साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बरतानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: अच्छा जी, आपकी कॉल्स का बेहद शुक्रिया। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं शायद जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाता हूं। तो भाई आई विश के मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता तो मैं आपको दिखा देता कि स्टूडियो के अंदर जो ये जो लाइंस फ्लैश कर रही हैं टम टम टम टिका टिका टिका टम टम टम, ये मैं आपको दिखा सकता लाइव। लेकिन वो भी दिखा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन देखिए, चूँकि कॉल्स की जो नंबर ऑफ़ कॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए और जिससे भी बात होती है वो भरपूर बात हो रही होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर बात हो, क्योंकि हम भी यहाँ हैं और आप भी यहाँ हैं। हम ना ही हमारा ये आखिरी शो है और ना ही आपकी आखिरी कॉल है। हम बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे और म्यूज़िक भी सुनेंगे और इसके साथ साथ मशहूरियाँ भी सुनेंगे। देखिए, ये जो मशहूरियाँ होती हैं ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। गाने तो सारे लोग एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं, लेकिन मैं आप सबको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको आज मशहूरियाँ डेडिकेट करूँगा। जितने भी एड्स हैं ये मैं आपको डेडिकेट करूँगा। मैं कहूँगा ज़रा इनको गौर से सुने और सुने कि ये क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आप की कॉल नहीं मिल रही तो मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। वो मशवरा मुफ्त है और मुफ्त मशवरा देने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे तो आप मुझे नहीं देंगे और ना ही किसी और किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक छोटा सा काम करेंगे कि मैं आपको थोड़ी देर बाद वो मशवरा बताऊंगा, और मशवरा बहुत फ्री में है, ये जहन में रखिएगा। उसका कोई नुस्खा नहीं है, उसका मतलब कोई उसकी कीमत नहीं है। वो मशवरा मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं 01274306666 पर। अगर आपकी इस नंबर पर कॉल नहीं मिल रही तो मेरे पास एक बहुत मुफीद मशवरा है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। Stay tuned.
1: NV2K10 baby, the Galax, all up in your speaker box, Dr. Zooks, yeah, you don't know, get low.

तो लीजिए हम आपको ये देते हैं मशवरा, और वो मशवरा ये है कि अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही फॉर सम रीज़न, या मैं उठा नहीं पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न, वो रीज़न यही है कि कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और बंदा मैं कल्ला ही हूँ, इंसान मैं एक हूँ, और वो कहते हैं कि एक जिंदली तो दो हज़ारा, बंदा मैं अकेला हूँ और कॉल्स आप लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैं अकेला हूँ आपकी कॉल्स लेने वाला और मैं वन बाय वन ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे बात हो पाए। लेकिन अगर आपसे ये मेरी बात नहीं हो पा रही तो आप एक काम कीजिएगा, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाइएगा। मतलब आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप sunriseradio.fm पर जाइए और उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इनमें से किसी एक के थ्रू भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट यूट्यूब, लेकिन आप बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन पर आप हमें डीएम कर सकते हैं और वहां पर भी आपसे हमारी बात हो पाएगी। तो ये एक बहुत मुफीद किस्म का मशवरा मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो एक तो मशवरा भी मुफ्त है और दूसरा ये काम भी मुफ्त है। मतलब इसमें आपको कॉल करने को पैसे नहीं लगेंगे, वैसे तो आजकल इतने लगते नहीं हैं, फ्री नेटवर्क है, मतलब कहीं भी आप कहीं भी लोकल नेटवर्क पर हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही फ्री है। आपने बैठकर मैसेज करना है और हमने पढ़ लेना है ऑन एयर आपका मैसेज, और आपके दिल की जो भड़ास है, भड़ास से मुराद है कि जो आपकी चाहत है, वो जो डुल डुल के आ रही है हमारे पास, उसको हमने समेट कर अपने जो आपके अल्फाज हैं उनको आवाज़ देनी है और वापस आप तक पहुंचाने हैं और आपके चाहने वालों तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। अगर आपको अभी तक मेरा नाम पता नहीं चला तो मैं आपको वो भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। स्टे ट्यून्ड।

राइटो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हुआ चाहता है प्रोग्राम का एहतिताम। ओके, यहाँ पर मुलाकात जो हमारी पिछले 3 घंटे से जारी थी वो अब उसका कह लीजिए कि एहतिताम हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अंटिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखा कीजिए, अपने साथ साथ अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी, अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपने माँ बाप का। क्योंकि माँ बाप दुनिया में इंसान की 2 आंखों की तरह होते हैं। अगर एक आंख देखना बंद कर दे तो दूसरी आंख उसका काम देती है, लेकिन अगर दोनों आंखें देखना बंद कर दें तो इंसान की जिंदगी एक अंधेरा बन जाती है। उसको दिखाई कुछ नहीं देता, उसको सुनाई भी कुछ नहीं देता। अपनी आंखों की हिफाजत किया कीजिए, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों, रफका और अपने अजीजों अकारब का ख्याल रखा कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।

0: लड़े।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्हां ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: The classic hits. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: My radio got the greatest station, radio station in the world.
1: Sunrise Radio.
2: पैरें ये जुतियां भी कसी गई पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ दो पौंड ना कानस लाने ना एक पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935।
4: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
5: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
4: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
5: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
6: Official media partner, Sunrise Radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा ज्वेलर्स ओकलैंड ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

लाओ भी दोस्तों अपने छोटे वीर रूपन कालों के संगीत विच कुछ वखरे अंदाज विच पेश करन जा रहे हैं पंजाब दी कुछ लोक बोलियां तुहाडा अपना